पनि हामी विश्वास एक चिज अन्त अन्त रिचुलीको दुई ग्यारिक बेल मसाला डाल्छौँ म यहाँ फोटो चिप्स अन्त अल्सो गार्लिक ब्रेड थ्री विथ थ्री जसमा चाहिँ थ्री विथ ब्ल्याक अन्त विदाउट मिल डाल्छु अन्त थ्री विथ लेमन अन्त विथ जसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आई लाइक टु सी अल्वेज प्लेस.